जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजन बाजी सात संगत जीओ, आप जी ने सौदा रहरा साहब बाणी के जाप सरवण किए हैं। आओ हुण गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़ते हाँ। हजूरी रागी भाई हरबख्श सिंह जी समूह जथे पासों कीर्तन सरवण करिए और बेनती है आने वाली 4 जुलाई में गुरु घर विखे शाम 3 बजे अमृत का बाटा तैयार हो रहा है। जिन्होंने अमृत नहीं छकिया अपने नाम लिखाओ, अमृत छको गुरु वाले बनो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।

गुरु प्यारी सात संगत जीवत की हाजरी आप जी ने प्रवान करनी। सतगुरु जी की अमृतमई बाणी का कीर्तन करते हैं। हुई गलतियां की आप समाग संगत जी ने खिमा बख्श देनी। आओ जी हुण साडे अति सत्कारयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी दमदमी टकसाल तो उन्हां द्वारा गुर इतिहास सतगुरु जी की अमृतमई बाणी के विचार सरवण करना करिए जी। आप जी ने आसीस बख्शनी, फतेह गजाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: इसीलिए दिख रही है। बहुत दर्द कर रहा है, मैं तो आया नहीं, आज ठीक नहीं आया। हाँ ठीक, बहुत दर्द कर रहा है, इधर जाऊँ और अच्छा हो जाता, और आ नींद नहीं है, बहुत दर्द कर रहा है। 8 दिन आज मैं ठीक नहीं आया। और
1: Mm.

जिसकी वास्ते जागे राखे प्रभु के आज्ञा माने माते उसे चौकन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होपत जान अनेत बिरख की छाया सो रंग लावे ओ बिन सेव मन पछतावे जो दिसे सो चालन।

लोक, जैसे सूर सर्प को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दर्श समान, जैसे राजा को लागे तोल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीज एक ज्यो सुधा को खोदे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का यह कनाओ नानक यो पाप का सह सुहाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रकाश, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रिना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दे समर्थ बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता आपत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुभला, ब्रह्म ज्ञानी

पूर्ण होई सेवक की सेवक। आल जंजाल पुकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभु धारी, नानक ने भी खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जस मन वसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान, पुरख पट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान। बौर न होवे आवण जान, हर तन काट चले जन सोए। नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रित नाम रिद। बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप योग प्रभु ध्यान। ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल विकास। सब कह मत सकल ते उदास, सुंदर चतुर तत्का बेता। समदाष्टि एक दृष्टिता,

जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। कर दूजा मात गर्भ मह अपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर मैं तारह तारन हारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

असंख मूर्ख अंध घोर संघ जोर आराम घोर असंख अमर कर जाहे जो संघ अलवड़ त्याग माहे असंख पापी पाप कर जाहे संघ कूड़े आर कूड़े फिराहे संख मलेश मल भख खाहे संघ नंदक सिर करे भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तुस दसलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो संख है सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे ते सिर नाहे जे फुरमाए तिवते पाए जे ता कीता ते ता नाओ विनावै नाही को थाओ कुदरत गवन कहा विचार वारे न जावै एक बार जो तुद भावै साई भली कार तुस दा सलाम निरंकार भरिए हाथ पैर धन देह पानी धोते उतर सुखे मौत भली।

तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे में नाहीं कोई बिन गुण कीते भगत न होए। स्वास्थ्य हाथ बाणी बरमाओ सत समान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार बेल न पाई पंडती जे हो वह लेख पुराण भक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एको अंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै।